तू करता करना मैं नहीं जाहूं करी ना होई बलहारी कुदरत वसिया तिरंत न जाई लखिया रहा जात मैं जो जोत मैं जाता अकाल कला भरपूर रहा तू सच्चा साहिब सिस

तुझ जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनेक तेरी अनेक करें हर पूजा जी तब तापें जपें बेअंता तेरे अनेक पढ़े बहु सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खाट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भावें मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निचल करता सोई तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करें सोई।

जी जो सबसे का जानोई। आसा महला चौथा। तू करता सच्यार मेंडा साई, जो तो भावे सोई थीसी, जो तू दे सोई हो पाई। रहाउ सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनु कृपा करें ते नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मनमुख गवाया, तुदे आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाणे। जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोए। तू कर कर वेखें जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला। तेत सरवरड़ै पहिले निवासा, पाणी पावक तिने किया। पंकज मो पग नहीं चालै, हम देखा तह डूबी अले। मन एक ना चेत समूड मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाऊ।

किया तमाशा, जमन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जूथियो, जमन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताए हमारा, जमन काल सब जगत बनायो, देव दै जशन उपजायो, आदंते कै अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिसी को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी, शिवकण को शिवगुण सुख दियो, शत्रण को पल मोह बद कियो, कट कट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचरे स्थूला, सापर कृपा दृष्ट कर फूला।

जब करख करा करतारा प्रजा तर तब दे पारा जाबा करख करत हूं कब हूं तुम मैं मिल दे तार सब हूं जेते बदन श्रिष्ट सब तार है आप अपनी बूझ उचार है तुम सब ही ते रैत निरालम जानत बेद भेद अरियालम निरंकार निर्वकार निर्लंब आद नील अनाद संभ ताका मूड़ उचारत भेदा जा को पेव न पावत बेदा ताको

सिमरत शास्त्र वेद सब बेद कहे हम एक ना जानियो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तुहे बखाने दोहरा सगल द्वार को छाड़ के

सदा शिव सला तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही कर तेरे, साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख माना वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटो जिस दियां ए वड़ियाइया, कह नानक सुनो संतो शब्द तनो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तित कर सुभागै कर सुभागै शब्द वाजे, कला जित कर तहारिया पंच दूत तुद वस कीते, काल कंट को मारिया तुर करम पाया तुद जिन को से नाम हर कह लागे, कह नानक ता सुकुआ तित कर अनहद वाजे, आनंद सुनो बड़ पागी हो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रापाया उतरे सगल वसूरे, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी, संत साजन पए सरसे पूरे गुर ते जानी, सुनते पुनीत कहते पवित्र

का सदका सर्व सुख होवै, जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत, देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत, श्री साहिब।

ज्ञान रतन परगाशिया हर मन वसिया निरंकारी जियो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कुटान कुटान शुकराना अकाल पुरख वाहिगुरु दा। शामा वेले दे सज्जे दवाना दियां हाजरियां पर्दियां पावन बाणी सोधर के पाठ कीर्तन दे नाल आप जी ने सांझ बनाई है तो समूह संगत दे उत्ते सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा करन पढ़ी सुनी बाणी साडे जीवन दा आधार बने जी। आओ समा है गुरबाणी दे कीर्तन दा। सत्कारयोग भाई अंग्रेज सिंह जी उन्हां दा जथा आप जी नूं रब्बी बाणी दे कीर्तन सरवण करावेगा तो बड़े प्यार नाल कीर्तन सरवण करो जी। कड़ा प्रसाद की देग वरत रही है गुरु के लंगर तैयार ने आप जी ने लोड़ मुताबक छाके जाने। आओ 6:20 तक सतगुरु की अमृतमई बाणी दे कीर्तन सरवण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

करजा वैरी शीस ते सुता तुम्हारी धाम, इन तीनों के चैन में क्या नींदर का काम। तीन जने आ जिन्हां नूं नींद नहीं आउंदी। एक तां करजा, जिन्हें किसे तों करजा लिया होवे, पिंडां दे विच आए कोई गरीब किसान हुंदा, जां किसे ने कोई धंधा अपनाउणा हुंदा, कोई कारोबार खोलना हुंदा है, जां बैंक तों जां शाहूकारां तों आड़तीए तों करजा लै लैंदा। कई बारी व्याज की पंड इन्नी बन जाती है, मूल ही नहीं मुड़ता। उस व्यक्ति नूं नींद नहीं आउंदी जिन्हें करजा लिया हो। करजा दूजा वैरी, जिहदा कोई वैर पै गया हो, चाहे भरा भरा का वैर है, चाहे तो कोई भी दुश्मन है। अजकल गुस्सा हरेक दे कोले हुंदा है, कोई गल सहारदा नहीं है, वैर पै जांदा, उस रौला पै जांदा। जिहदा किसे नाल वैर पै गया है, वह हथियार रख के सौंगा ते हथियार लैके किसे पासे जाऊगा कि मेरे उपर कोई अटैक ना कर दे, आपदा बचा करूगा। एहो जे बंदे नूं भी नींद नहीं आउंदी। तीसरा है सुता सुता, कहिंदे कन्या नूं, जिन्हां दे घरे लड़की कुवारी है, जिन्हां मापिआं दे घरे बच्चियां हन लड़कियां हन, उन्हां मापिआं नूं नींद नहीं आउंदी फिकरां दे मारे कि साडी लड़की असीं पढ़ी है पढ़ाई है उह चौधे ते बैठी है, आपदे पैरां सिर खड़ी होई है, इहनूं वधिया वार मिले। ये तीन जने हन जिन्हां नूं नींद नहीं आउंदी गी। देखो ये बुढ़ा बापू बेचारा रहीमा बख्शा फरियाद करदा जाके उन्हां दे कोले वी, मेरी इक्को इक लड़की आ उह पठान लै गिआ पट्टी दा। नजरां नीवियां रख के तुरे बंदा मान वधदा फिर जहान उत्ते। अमल गीता दे शब्द ते करे हिंदू, मुसलमान भी करे कुरान उत्ते। बूहे हमेशा बहसतां दे रहण खुले, रहे गुरु दा शब्द जवान उत्ते। तत्ते थम भी उन्हां नूं सार देना, पक्के रहण जो दीन अमान उत्ते। चाहे आपो अपना धर्म है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, कोई सिख है, सारे जने आपो अपने धर्म ते परपक्क रहण। ये नहीं है भी किसी ने लालच देता तू साडे वाले पासे आ जा, तेन लालच दे देने, तेन असीं आ मुरब्बे देवांगे, असीं आ देवांगे। वह साडे बाबे बाजां वाले सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जीआं ने जुत्ती दी नोक ते ठकरातियां नवाबियां, जगीरां बेगमां दे डोले दिंदे सीगे। वह थोड़ी उम्र कहड़ी है बच्चिओ, थोड़े पिता नूं असीं फड़ तां लैणा ही है, खत्म भी कर दांगे। वजीद खां वर्गे कहिंदे सुच्चा आनंद पापी वर्गे बह जे बेड़ी उहनां दी। एहो जे बोल रहे है भी यह सपोलीए हैं, गुरु नूं सप दस रहे उहदे बच्चे सपोलीए हैं। वह कहिंदे साडे वाले पासे आ जाओ, बड़ा कुछ सानूं देवांगे। जुत्ती दी नोक ते ठकरातियां नवाबियां, गुरु दे साहिबजादियां ने, साडे बाबियां ने, असीं सत्कार करदे हैं। सो प्यारे खालसा जी, जिहड़ा डोली गया भी किसी नूं कोई कह दे तू साडे धर्म विच आ जा, तैनूं असीं आह दिंदे आ, आह दिंदे आ, आह लालच दिंदे आ, पर नहीं, जिहड़ा गुरु का खालसा है, गुरु का सिख है, वह तो नवाबियां भी ठोकरा मार दिंदा है, वह तो गुरु का प्यार भालदा है। राज ना चाहूं मुक्त ना चाहूं मन प्रीत चरण कमलारे, मारा राज नहीं चाहिदा, कोई वजीरी नहीं चाहिदी, कुछ नहीं चाहिदा, अपने तुसी चरणा दे विच थां दे दिओ, दिल दे विच मैनूं जगह दे दिओ, मैं हर पल हर समा हर घड़ी थोड़े दीदार चाहना है, तेरे दरबार की सेवा चाहना है, तेरे दरबार से झाड़ू मारना चाहना, मेरे ते कृपा कर दे, कुछ नहीं चाहिए, मुक्त ना चाहूं भुगत कुछ नहीं चाहिए, आपे कृपा हो जानी है, जब दुनियावी मंगा परा रहनियां, रूहानियत मंग है, तेरे चरणा ना प्यार, तेरी तस्वीर हिरदे विच वस जावे। उन्हां दिलों का भेद दरबार क्या है, जिथे चरण कमल की मंग एको, उन्हां दिलों का कोई भेद नहीं है। भैन नानकी ते खुश हो गए गुरु नानक महाराज, भैन नानकी नूं कहिंदे नानकी तू कई जन्म तू साडी भैन, अपना पुराना संबंध है पहलां तों भी, हुण भी अज तू साडी भैन बनी है, दस तू मैनूं की समझदी है। कहिंदी मैं तां उहदे वीर नूं रब मन्निया, खुदा मन्ने। गुरु नानक खुश हो गए, कहिंदे भैणे दस मैं तैनूं दूजा रब बना दां, दूजा खुदा बना दां। भैन नानकी कहिंदी जद मेरा वीर रब है, मेरा वीर खुदा है, रब है, लोकी रब कहिंदे, मैं दूजा रब बन के की करना। महाराज कहिंदे नहीं नानकी, दस तैनूं दूजा खुदा बना दां, तेनू दूजा रब बना देवां। भैन नानकी ने जवाब देता, कहिंदी मैं रब नहीं बनना, देखो गुरु साहब अपार बख्शिश कृपा कर रहे है। भैन नानकी कहिंदी नहीं, मेरा वीर रब है, मैं रब बन के की रहना है, ताही ता ही प्रेम है, जन प्रेम कियो तेन ही प्रपाए, प्रेम मुरे कोई नेम नहीं है, प्रेम दे बच्चो असीं भगवान नूं रब नूं बन के कुछ भी करा सकते हैं, पर जे धर्म मान दे विच पक्के है, जे हिंदू है जो गीता दा उपदेश है वह मन्ने, जो मुसलमान है जो कुरान कहिंदी है वह उपदेश मन्ने, जिहड़ा सिख है गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने वह उपदेश मन्ने। ये नहीं है भी उपर उपर बाणी पढ़नी, अंदरों तखियां छनुआं चलाउणियां हन,
बुरा सोचना है ओदा नुकसान हो जावे ओ गरीब हो जावे मैं अमीर हो जावा सारा कोई मेरे को आई जावे दूजा आए हो जावे एहो जे मनसूबे एहो जिया अरदासा नहीं फलदियां हन। देखो इत मुसलमान ही मुसलमान का राह कट रहा है उन्होंने नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है सिखा नु तो नुकसान पहुंचा रहे है रहीम बख्श जी लड़की चाके ले गई है पट्टी का जफर बेग यह फरियाद लैके जकरिया खान दे कोले गया है जो पंजाब का गवर्नर है रहीमा बख्श उथे पहुंचता है जो उथे पहुंचे ना पहली गल तो अंदर ना वड़न देन भी पुराने जे कपड़े पाए हुए है वो फिर जो कोई मसा बारी आई उन्होंने कहते भेजो अंदर बुढ़ा फिर सवेर का कितने इधर जाता भेजो इन अंदर आओ। जकरिया खान दे कोले पेश किया रहीमे बख्श न वो हाथ जोड़ के फरियाद करता है। जकरिया खान कहता की दुख है तेन की है मैं देखी जाना तू दोपहर का फिर रहा है शामा हो गई की दुख है तेन। वो कहता जी मैं फरियादी है फरियाद लैके थोड़े चाना चाया मेरी धी है 16 साल की चक के लै गया कोई। वो जरा गवर्नर जकरिया खान कहना कौन लेके गया है कहते मैं पट्टी तो आया पट्टी के जो मिर्जे है जफर बेग ओ लै गया है। हम जफर बेग तो खासम खास सीगा जकरिया खान का जब ओदा ना सुनिया है ना उस सपाही नूं कहिंदा उरे आओ करा आ बुढ़े की मत मर गई है इहदी मत ते पड़दा पै गया है ओ अमीर लैके गया तेरी धी राज करूगी बुढ़ा रौला पाउंदा है। सपाही नूं सद के जकरिया खान कहिंदा बुढ़े नूं बाहों फड़ो बाहर कढ़ो उस समय की

जिन्हें हों मैं शब्द जलाई, तिसका शरीक को नहीं, ना को कंटक वैराई। निचल राज है सदा तिस केरा, ना आवे ना जाई। अन दिन सेवक सेवा करे, हर सच्चे के गुण गाई। नानक वेख विगसिया, हर सच्चे की वड्याई। पौड़ी जिन कै हर नाम वसिया, सद हिरदय हर नामो तिनको रखनहारा। हर नाम पिता, हर नामो माता, हर नाम सखाई मित्र हमारा। हर नामे नाल गल्ला, हर नामे नाल मसलत, हर नाम हमारी करदा नित सारा। हर नाम हमारी संगत अत प्यारी, हर नाम कुल हर नाम परवारा। जन नानक को हर नाम हर गुर दिया, हर हलत पलत सदा करे निस्तारा। हर नाम हमारी संगत अत प्यारी, हर नाम कुल हर नाम परवारा।

पवित्र उपदेश आप संगता ने बड़े प्रेम अदब सत्कार सहित श्रवण किए हैं। अज बहुत सारिया संगत भादरों के महीने आरंभ मुख रखद संगरान के दिहाड़े मुख रखद सतगुरों के पावन दरबार अंदर नतमस्तक हो रही ने। मूल नानक शाही कैलेंडर के मुताबक इस गुरद्वारा साहब विखे भादरों का महीना कल मनाया गया सी। बिक्रमी कैलेंडर के मुताबक संगरांद अज है तो यह कैलेंडर के वखरेवे ने जिस करके संगत हमेशा ही दुविधा के विच रहिंदी है। कई बार संगरांदा कट्ठिया आ जांदियां ने, कई बार संगरांदा अगे पिछे हो जांदियां ने, पर मेरा ख्याल आ भी सानू इन्हां सारिया मसलियां तों उत्ते उठ के गुरु नू गुरु के रूप के वेखदियां नेता प्रति रोजाना ही इस रूप के गुरद्वारा साहब की हाजिरी भरनी चाहिए आ कि साडे लई रोज ही संगरांद। मैं इस करके गुरुद्वारे नहीं जाना भी आ संगरांद का दिहाड़ा आ, मैं इस करके गुरुद्वारे जाना भी मैं अपने गुरु तो बिना एक दिन भी बतीत नहीं कर सकता। इसी महाराज ने बाणी च आख्या ना, मेरा मन लोचे हर दर्शन ताई बिलप करे चातर की न्याई तिरखा ना उतरे शांत न आवे बिन दर्शन संत प्यारे जीव। ये भी आख्या एक घड़ी ना मिलते ता कलयुग होता। मैं रोज ही अपने गुरु के करके गुरुद्वारे जाना, मैं छमाही बात नहीं जाना, मैं नवे साल ते नहीं जाना, मैं संगरांद ते नहीं जाना, मेरे लिए रोज ही संगरांद। जिदन मैं अपने गुरु के नेड़े हो जाना, तुसीं संगरांद के दिहाड़े नूं मुख रखदे आ कोई भी उपदेश पढ़ लो। मैं तुहाडे लई फॉर एग्जाम्पल शेयर करदा, पहला चेत दा महीना आपां चेत दे महीने का पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। चेत गोविंद आराधी होवे आनंद घना, संत जना मिल पाई रसना नाम भना, जिन पाया प्रभे अपना आए तिसे गणा, एक खिण तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जाना। जल थल महियल पूरिया रव्या विच वणा, सो प्रभ चित न आवे कितड़ा दुख गणा, जिनी रावया सो प्रभु तिना भाग मना, हर दर्शन कौ मन लोचदा नानक प्यास मना। अखीर त्या क्या चेत मिलाए सो प्रभु तिसके पाए लगा। तो यानी कि जिहड़ा मोरल निकलिया, निष्कर्ष निकलिया, कंकलूजन निकलिया, यही निकलिया कि मेरे लिए चेत का महीना ता ही सफला आ जे मैनू गुरु मिल जाए। तो इदां ही सारे महीने आ मेरे लिए। वैसाख कदों चंगा आ, वैसाख सुहावा तां लगे जां संत भेटे हर सोए। जे गुरु मिल गया तो वैसाख ठीक आ, जे गुरु नहीं मिलिया यानी कि जे जिंदगी जीण दा तरीका नहीं आया तो फिर वैसाख होवे जां हाड़ होवे की फर्क पैंदा। जे मैनू जीणा ही नहीं आया इदां ही आ ना, मैं घर बदल लैना आ, लोकेशन चेंज कर लैना आ, जगह बदल लेना है। क्यों असी कहने जी जदों दे इस घर च आए ना तो लड़ाई रहिंदी है, पर सवाल यह भी लड़दा कौन, लड़ाई किस वजह दे करके आ? कि कन्ना लड़दियाँ आपस में, इटा लड़दियाँ आ? नहीं, मैनू घर बदलने की लोड़ नहीं हैगी, जगह बदलने की लोड़ नहीं हैगी, मैनू अपनी सोच बदलने की लोड़ है, क्योंकि लड़ाई मेरी सोच करके आ। साडी दोवां जीआं दी आपस में सोच नहीं रल रही, साडी विचार नहीं रलदी। तो गुरु साहब ने हर हर महीने के अखीर में यही आख्या भी जे तेनों गुरु मिल जाए ना तो तेरा जेठ चंगा हो जाए, जे गुरु मिल गया तेरा हाड़ दा, जे तेनों गुरु मिल गया तेरे लिए हर दिन ही हाड़ दा महीना है, हर दिन ही सौण दा महीना है। पर जे मैनू गुरु नहीं मिलिया, मेरे लिए सोमवार होवे, मंगलवार होवे, बुधवार होवे, की फर्क पैंदा? मां दिवस मुहूर्त पले जिस को नदर करे, जे गुरु की कृपा आ मेरे लिए सारे दिन ही चंगे आ, हर मिनट चंगा आ मेरे लिए, हर घड़ी चंगी है मेरे लिए। तो इस रूप के मैं गुरुद्वारे आवा नहीं महाराज, मैं किसी पदार्थ को मुख रख के नहीं आया, मैं किसी दिन को मुख रख के नहीं आया, मेरे मन में इच्छा सी भी मैं अपने गुरु के दर्शन करा, मैं तां आया। जो तुम इसी महाराज ने आख्या ना, सेवा करत होए निहकामी, निहकामी का मतलब निष्काम हो जाना, पिछे डिमांड ही कोई नहीं हैगी, पिछे होप ही कोई नहीं हैगी भी नहीं अज संगरांद पिंडा च इदा हुंदा सीगा, क्योंकि जिहड़ा पुजारीवाद का स्ट्रक्चर आ वो अजे तक। मैं अक्सर बेनती करता हूँ, कई बार गल ज्यादा बार रिपीट हो जाए तो मैं चाहता नहीं भी रिपीट हो, मैं क्योंकि संगत नवी मैरिज करदा। जो 18वीं सदी का समा आया, सिखां दे उत्ते एमरजेंसी लगी, भी कहानी कित्थों शुरू हुई, जो सिखां दे उत्ते एमरजेंसी लगी, सिख घरों बेघर हुए, जंगलों में चले गए, जिहड़े सिखां दे इतिहासक स्थान से, गुरद्वारे से, सिखां दे धार्मिक स्थान से, साडी साडे नाल ज्यादा नेड़ता जिहड़ी सी हिंदू परिवारां दी सी, क्योंकि मुसलमान साडे विरोधी सन उदों, सारे नहीं पर कुछ सरकारां उदों, क्योंकि मुगलां दी सरकार सी उदों। तो जिहड़े साडे नाल नेड़ता रखण वाले हिंदू परिवार सन, उन्होंने आख्या भी जिन्ना चिर तक तुहाडे ते अमर

पड़े अपने आप साथ जो अपने रचियो नाओ दोई कुदरत सा जे करा संडिठो चाओ दाता करता आप तू तुस देवे करे पसाओ तू जाने सब सिद्ध लै सह जिंद कवाओ करे आसन डिठो चाओ करे आसन डिठो।

पौड़ी सच्चा सब एक तुझन सचो सच वरताया। जिस तू दे तिस मिले सतत नी सच कमाया। सतगुर मिले सच पैजन के हृदय सच वसाया। मूर्ख सच न जानी मनमुखी जन्म गवाया। विच दुनिया काहे।

0: काल जुगरत अगण काकूण गिरथवा महला पहला।
1: शाम कह सितंबर स्वामी सच में अच्छे सच लगे सब कुछ सच समावेरे कह रहा प्रभु राम नाम देव मैसूर नायले ब्रश जाए नानक तो मुखं तर पाए जिज में जूर श्री चंद्रावल कान कृष्ण जादम पया पार जात को पिले आया बिंद्रावन में रंग किया कल में भी रत्रवन हुआ नाम खुदाई लुपया नील वस्त्र ले कपड़े पैरे तुरक बठानी मलकियां चारे वेद हुए सचियार पड़े।

0: जाए, सो करे जे तिसर जाए, सो करे जे तिसर जाए सुध।
1: राम कलिमा लदी जा आनंद कंकार सतगुर प्रसाद।

कोई न जाने ऊचते ऊचा सगल समगर ही तुमते हो सो तुमरी गात में तो तुम ही नानक दास तुमरी गात में तो तुम ही नानक दास बोलो जी सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु जी एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भौत जी सहाय वार श्री भौत जी की पातशाही दसवीं प्रथम अगौती सिमरख है गुरु नानक लई त्याए फिरंगत गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोबिंदो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिठै सबद हो जाए तेग बहादुर सिमरया कर नौन दे आवे ताए सब थाई होई सहाय दसवें पातशाह तान श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ओ सब थाई होई सहाय दसो पातशाहियों की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे पवित्र पाठ दीदार दा ध्यान तर खालसे सब बोलो जी वाहे पंजां प्यारियां चौं सब जादियां चालियां मुक्तियां अठियां जपियां तपियां शाही सिंघां सिंघणियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेगवाई देख हिंडट कीता तिन्हां गुरमां प्यारियां सच्चारियां दी कमाई दा ध्यान तर खालसे सब बोलो जी वाहे जिन्हां सिंघां सिंघणियां धर्म सिह दिते बांध बांध कटाए चरखड़ियां ते चढ़े आरिया नाल तंचर वाए उबलदियां देगां विच उबाले के खोपरियां लुहाईयां गुरद्वारियां दी सेवा संभाल लई कुरबानियां कीतियां तेरे भाणे नूं मिठा करके मन्निया असहे ते कह असहार दे शीदो सिकिद के सवासां संग नभाई धर्म निहारिया तिना समूह शहीद सिंह सिंघणियां की कमाई का ध्यान तर खालसे सब बोलो जी वाह पंजां तख्ता सरबत गुरुद्वारिया जी का ध्यान तर खालसे सब बोलो जी वाह प्रथम खालसे जी की अरदास है जी सरबत खालसे जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावे चेतावन का सदका सर्ब सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया जाए दे ते फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले खालसा जी सब बोलो जी वाह सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान वसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के इशनान चौंकियां झंडे बूंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार खालसे जी के बोल बाले खालसे सब बोलो जी वाह सिखां दा मन नीवा मत उची मत दे राखे आप काल प्रसंतर जामे गुरु की निवास जी पातशाह पांदे सदा सहाय दार पिता जी ओ श्री ननकाणा साहब और गुरुद्वारे दिना तो परत नूं छोड़िया गया सेवा संभाल अपने खालसा जी नूं बख्शो जी नमाण्या दे माण नदाणिया के तान ने उल्टियां उड़ने आसर आसर धान श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पातशाह जी आप दी अपार बख्श रहमत कृपा दा सदका अमृतले सजी दीवाना विच आप दी लाही बाणी दे पाठ उपरंत श्री आसर जी वादे कीर्तन की सेवा हुई सेवा करदे हुई भुलां बख्श लैणियां पढ़ी सुनी बाणी का भाव सरबत दाराई सा संगतां दे हिरदिया विच वसाउणा जो संगत आप दे चरणां च जुड़ बैठियां तिल फुल भेटा लैके आप दे चरणां विच हाजिर होए ने दाता जी सब दी हाजरी दर पवानी सेवा थाए पौनी सिर ते मेहर भरिया हथ रखना परिवारां विच सुख वरतौना सरबत संगतां दे कारोबार च बरकतां बख्शिश करनियां दरों करों सिखी सिद्ध भरोसा नामदान अमृत जागणे नितनेम करन दे बाल बाणी ते बाणे नाल प्यार बख्शिश करना आने वाले समय चढ़दी कला वाली पंथ दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना सेवादारां नूं चढ़दी कला वाली भाई गुरविंदर सिंह जी भादरों महीने की सुख शांति की जाचना करदिआं होइआं बेअंत मैं अरदास करने मेहर नहीं करनी परिवार के सिर ते मेहर प्रयात रखना महीना सुख आनंद बतीत करना परिवार को चढ़ती कलावनी सेवा थाए पाउनी शुभ भावना पूरी करनी पवित्र हजूरी बच्चा
ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਗਾ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੇ ਸੰਦ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਾਓ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਗੁਰਮੋ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਰਹਿਣ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ, ਜੋ ਬੋਲੀ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

गुरमुख नाम मोले राम, हर रस बीदा हर मन प्यारा, मन हर रस नाम च घोले राम। गुरमत मन ठहराई है मेरी जिंदड़ी है, अनत न काहूं डोले राम। मन च दड़िया फल पाया हर, प्रभ गुण नानक बाणी बोले राम। गुरमत मन अमृत बूठड़ा मेरी जिंदड़ी है, मुख अमृत बैण अलाए राम। अमृत बाणी भगत जना की मेरी जिंदड़ी है, मन सुनिया हर लिवलाए राम। चिरे वशुना हर प्रभ पाया, गल मिलिया सहज सुभाए राम। जन नानक मन आनंद पिया है मेरी जिंदड़ी है, अनहत शब्द वजाए राम। सगी सहेली मेरी आया मेरी जिंदड़ी है, कोई हर प्रवेहान मिलावे राम। हो मन देऊ तिस आपना मेरी जिंदड़ी है, हर प्रभ की हर कथा सुनावे राम। गुरमुख सदा आराध हर मेरी जिंदड़ी है, मन च दड़िया फल पावे राम। नानक भज हर शरणागति मेरी जिंदड़ी है, वड़भागी नाम त्यावे राम। कर कृपा प्रभ आए मिल मेरी जिंदड़ी है, गुरमत नाम परगासे राम। हो हर बाज उड़ीनिया मेरी जिंदड़ी है, ज्यो जल बिन कमल उदासे राम। गुरपूरे पर मिलाया मेरी जिंदड़ी है, हर सज्जन हर प्रभ पासे राम। तन तन गुरु हर दसिया मेरी जिंदड़ी है, जन नानक नाम बिगासे राम। गुरपूरे मिलाया मेरी जिंदड़ी है,

0: मेरी जिंदड़ी है, जन नानक नाम बिगासे राम। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। परमस्कार जो शासन जी, सतगुरु जी रहम होता ही अमृत वेले सज दीवाना दिया हाजरियां भरिया ने, नेतनाम की बाणी के पाठ उपरंत आज सकी वार कीर्तन श्रवण किए, रस प्राप्त किया, उपरंत सरबादे पले ली आप सरबत संतों की चढ़ती कला ली गुरु चरणा में अरदास बेनती हुई है। सतगुरु ने पवित्र हुक्मनामे बख्शे, जो आप श्रद्धा ना श्रवण किए ने, गुरु कृपा करे बख्शे आप देस हिरदे में दृढ़ हो सके। और इस पग शब्द की जो कथा विचार है भाई साहब भाई गुरशरण सिंह जी आप जी ने श्रवण कराउंगे, बड़े प्यार श्रवण करना जी। जो कैंप लगे ने बच्चों के उन्होंने सेवा लिए आप जी ने बेनती है कि किसी परिवार ने कोई भी सेवा करनी हो दिनों तो बड़ी खुशी ना तुसी कर सकते जे। दूसरा जिथे बीसी विच अग लगी आ उत्थे बहुत सारे घर बेकार हो गए ने, उन्हां वास्ते भी रस्ता वस्ता आदि की लोड़ है, तो आप गुरुद्वारा साहब पहुँचाओ ता कि उत्थे उन्हां नूं इह राहत पहुँचाई जा सके। आपका धन्यवाद सभनां दा, आओ सरवण करिए अज दे मुख वाक दी कथा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ, तू मेरो मेर परबत स्वामी,

ताक दुर्गंध गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम ज्यो कृपन के नरार्थ दाम रहत अवर कश अवर

0: प्रतिष्ठा कर को रख मन माए
1: जे
0: प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याए सदा मन अंदर जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई है त्यावन जोग जे प्रसाद सुख सेज सोई जय मन आठ पैर ताका जस गावी जय।

0: पदी साध के संग मुख उजल होत साध संग मल सगली खोत
1: साध के संग मिटे अभिमान साध के संग परटे सुज्ञान
0: साध के संग बुझे प्रभ नेरा साध संग सब होत नवेरा
1: साध के संग पाए नाम रतन साध के संग गो पर जतन
0: साध की महिमा बरने कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रभ माए सुमानी
1: साध के संग अगोचर मिले साध के संग सदा पर फुले
0: साध के संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पहुंचा
1: साध के संग मनोहर मैन
0: साध के संग न कतहु तावे साध संग अस्थित मन पावे
1: साध के संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्राप्त सो प्रसन्न
0: साध संग दुश्मन सब मी

0: प्रभु बन आई साध संग बस्त गोचर ले साधु कै संग अजर सह साध के संग दृढ़ सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म साध के संग सब कुल उधारे साध संग साजन मीत कटंब निस्तारे
1: साधु के संग सोतन पावे जिस तंते सब को बरसावे
0: साध संग धर्म राय करे सेवा साध के संग शोभा सुर देवा
1: साधु के संग पाप लायन साध संग अमृत गुण गायन
0: साध के संग सर्व थान गम नानक साध के संग सफल जन्म
1: साध के संग नहीं कुछ काल दर्शन पेट दोत निहाल
0: साध के संग कलुखत हरे साध के संग नरक पर हरे
1: साध के संग यमात सिला साध संग विश्र तर मिला
0: जो इच्छे सोई फल पावे साध के संग न बिरथा जावे
1: साध राम साध रित बसे नानक उतरे साध सुन रसे
0: साध के संग सुनो हर नाओ साध संग हर के गुण गाओ
1: साध के संग न मनते विसरे साध संग सर पर निस्तरे
0: साध के संग लगे प्रभ मीठा साधु के संग कट कट डीठा

0: सी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी,
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता,
0: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान,
1: ब्रह्म

0: कर्म करतो वे न कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागे दुष्ट का संग
1: पर पूजे सगल पार ब्रह्मा
0: इसके मन पर ब्रह्म।

0: संत कृपाल कृपा जय करे, नानक सत्संग निंदक भी तरे, संतन के दुखन सर्प जोन पाए, संत के दुखन त्रिगत जोन करमाए,
1: संत के दुखन सब कोशले,
0: संत

संत का निंदक रायते हीन, संत का निंदुक यार दीन, संत के निंदा दुख में दुख, नानक संत पवेता उसका भी हो मोख, संत के दुखी को

करते रहत, संत का दुख सद मिथ्या कहत। संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुख को दरगे मिले स जाए। संत के दुखी की पूजे न आसा, संत का दुखी उठ चले नरासा। प्या किरत न मेटे कोए, नानक जाने सच्चा सोए। प्रभु की उस्तत करो दिन

0: से सत्संग
1: चरण चलो मार गोविंद मिटे पाप जपी अरविंद
0: हर हर कर्म सर्वन हर कथा हर हर ज्ञान कुजल मता
1: बट भागी ते

0: रे मन मेरे सदार जाप, अवनासी प्रभ आपे आप।
1: आपन किया कछु ना होए, जेसो प्राणी लोचे कोए।
0: तिस बे नाही तेरे किस काम, गत नानक जपे कर नाम।
1: रूपवंत होए नाही होए, प्रभ की जोर सकल कट सोए।
0: धन्यवाद।

राज में राज जोग मैं जोगी, तब मैं तपिस्तर गृहस्थ मैं भोगी। जाकी लीला।

सतगुरु सिखे बंधन काटे गुर का सिख बेकार ते हटे सतगुर सिख का हलत पलत सवारे ना सतगुर सिख को जी नाल समारे आपस को कर कछु ना जनावे।

0: एक स्थित नेका सतपुरख पूर्ण विवेका
1: बोल न पोचत प्राणी गोचर प्रभ निर्वाणी
0: मेरा हार निर्वै सुखदाई ताकि कीमत किने न पाई सत बलिहारी सत गुरु अपने ना जिस पर साध ऐसा प्रभ जपने उस पुर का नाही कदे बिना।

मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार कर्ण कारण सो प्रव सम्राथ दृढ़ कर गो नाम हर वाथा एक आसरा को मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाए जिसो को नित बाछे मीता सो सुख साधु संग प्रीता अनेक उपावी रोग न जाए रोग मिटे हर अवखद लाए मन पर बोधो हर के नाए दर्द सतावते आवे ठाए कल ताती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ।

माया विस्तार, इनते कहो कवन छुटकार। जेन दिए तिसे बुझे ना बिगाना, ना विसार नानक पस्ताना। हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत। आप जपो अवरा नाम जपावो, सुनत कहत रहत गत पावो। गुण गावत तेरी उतर समैल, बिंस जाए हो में बिख फैल। साठ स्याणप सगली।

आधार नानक मांगे ना प्रभ सार जिन चाख्या से जन तृप्ताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने परे सन आ सब

जब इसका वर्ण चिन्ह जपत तब हर कसो को किसे व्यापत अपन खेला वर्ती जा नानक करने हा न दूजा जब एक अर्घ में अपार तब नरक सुर को कौन अवतार जब आपे अपनी जोत रे तब कवन निडर कवन कत डरे अवनाशी सुख अपन।

सरस्वत पाई जबे अपने आप आपुर तारे तो सगन पसगन कहाँ बिचारे विषम विषम रहे विषमाद नानक अपनी गजन आप आप इसको आपे

0: जिस पर राखे तिस नाही दुखा, नाम जपत मन होवत सुखा।
1: जाए मिटे अहंकार, निर्जन को कोई न पूंजन हार।
0: सिर ऊपर थाडा गुरसुरा, नानक ताके काज पूरा।

चार कुंट दद से सुमहे बेर प्राण से मत में देखा ससिय सूर नखतर में एक सर्व कला कर खेले खेल मोल न पाइये गुणे अमोला गुर प्रसाद परम का नास नान तन में हो विशास संजना सुनो शुभ बचन सर्वव्यापी राम संग रचन जो जो होए सोई सुख माने कर्ण कराम हार प्रभ जाने आप सत क्या सब सत तिस प्राप्त सगली उत्पात अनि कला लखी न जाए जिस पावे थले मिलाए अंतर्गत से आप जनाए ना ते ससु आप बुझाए सगल समग्री जाका तन आपन जैसे आप ही सुना खेल बनाया माया सबके मत अल्पतो रहे जो किस कहना सो आपे कहे इससे होए सो ना ही बुरा उरे कहो किने कुछ करा आप साच तारी सब साच ओत पोत अपन संग राच इसका किया सब परवान गुर प्रसाद नानक।

0: अष्टपदी पूरे गोरखा सुन उपदेश पार मनिट कर पेखा
1: सा सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद
0: आस नित्या गोत्रंग संजना की तूर मन।

मिट गए बैर पे सबरेन, अमृत नाम साध संग लेना। आज जंजाल बेकार ते रहते, राम नाम सुसना कहते। प्रभु के उस्तत करो संत मीत, सावधान एक का घर चीता। सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए। हर तन खाट चले जन सोए, नानक जसे प्राप्त